0: किरेक सनातन बने दे बाल जो माता से रित थीं पर नो नियो बोले अफेट जो बता साउंड बाकुम्ला से नहीं ना पूजा बत्ती ने पिसना
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: कि एक समय तमाम बने जो बाहर जो माता से रिता थी फल नो नियो बोले अफेट जो वाता साउडी बाकुंडा से नियो पूजा बत्ती ने पिसल
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.